0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
0: And
3: Sweepee Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL. And

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. And
1: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account jahan khwab वहाँ HBL एंड तूफान है हर जीत
2: की पहचान है। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
6: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी।
7: का टाइम सी मनु ऐसे के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
8: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
5: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
9: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
5: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
10: FM 247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
12: कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ फॉक्स से ये कम नहीं।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: And
4: sweepy clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800 55 055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 247 365.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247 365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको पिया कॉलिंग कॉलिंग ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यार मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही, सवाल क्या पूछे, जवाब क्या लें आपसे। फिलहाल तो संडे के हवाले से बात करते हैं। अच्छा मुझे एक आप लोगों से शिकायत है भाई, शिकायत है भाई, शिकायत है, शिकायत है। आप पूछेंगे क्या शिकायत, शिकायत ये है कि जब यार आपसे कुछ पूछा जाए तो कम से कम उस हवाले से तो बात करो। संडे को किस तरीके से स्पेंड करते हैं आप, पूरा संडे जो है छुट्टी का दिन होता है, कैसे आप उसको गुजारते हैं, ये सवाल एक घर से है। मतलब घर में जाहिर है मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे तो चलो खैर उनको आप छोड़ दीजिए, बड़ों के हवाले से बात करेंगे। तो आप दिन कैसे गुजारते हैं संडे वाले दिन, वही रूटीन जो पूरा हफ्ता आपका गुजरता है उसी तरीके से गुजारते हैं, या फिर क्योंकि घर में मौजूदगी लोगों की ज्यादा होती है, क्योंकि एक वर्किंग वुमन या वर्किंग मैन जो है वो अपने टाइम का, दिन का जो वक्त होता है उसमें से तकरीबन 10-12 घंटे वो बाहर गुजारता है। क्योंकि 10-12 घंटे से मुराद ये है कि घर से निकलकर ऑफिस तक या अपने काम तक पहुंचने का जो वक्त है वो भी लंबा चौड़ा है आजकल। उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक और रोडों का जो हाल है, तो उसको पहुंचते पहुंचते भी एक घंटा लगता है या आधा घंटा किसी को लगता है, और इसी तरह आने जाने के टाइम को इंक्लूड करके तकरीबन 10 से 12 घंटे के करीब जो है वो घर से इंसान बाहर रहता है। फिर उसके बाद 8 घंटे की नींद ले लीजिए, तो घर में मुश्किल से 4-5 घंटे दिए जाते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन संडे का दिन ऐसा होता है कि आप घर पर ही मौजूद होते हैं, तो एक फर्द की या दो फर्द की जिसको कहते हैं इजाफा हो जाता है। तो संडे का दिन उसमें आप का रूटीन वर्क रहता है जैसा कि पूरा हफ्ता गुजर रहा है, या कुछ थोड़ा सा चेंज होता है, इस हवाले से अगर आप बता देंगे तो क्या बात है। हमारे इफ्तिखार साहब आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ। दिन आप दिन में दिन के वक्त आपका शो मुझे यकीन नहीं आ रहा, प्लीज कन्फर्म करें। लाइव है ये, रिकॉर्डेड है भाई। इफ्तिखार साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से संडे को मेरा शो होता है, और संडे को जो मेरा शो है वो दिन के वक्त ही होता है, दिन को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। शायद आपको टाइमिंग नहीं पता, मेरे वो लिसनर्स जिनको टाइमिंग नहीं मालूम हर शो की मेरे, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आज संडे है, संडे के दिन दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है हैप्पी आवर्स में। फिर आगे आ जाता है पीर और मंगल, पीर और मंगल को म्यूजिक ट्विस्टर मेरा प्रोग्राम होता है रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। मंगल के बाद आ जाता है बुध, जुमेरात और जुमा, इन 3 दिनों में मेरा शो होता है रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, स्लीपलेस नाइट। यानी कि समझ रहे हैं ना, हाँ समझते रहे समझते रहे, इसी बात पर जाएंगे एक ब्रेक की जानेब।
1: FM 24/7 365 توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, और सुनाएंगे आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, कैलो पढ़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मैसेजेस आपके आ रहे हैं खेच आई स्पेस, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। और फुटबॉल लवर्स हाउ आर यू, फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है जनाब, और आज रात 12 बजे के बाद फाइनल है अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। खैर बहुत से फुटबॉल लवर्स कह रहे हैं कि भाई फेवर कर रहे हैं अर्जेंटीना को और कुछ जो है स्पेन को, और बहुत से ऐसे मुझे मिल रहे हैं नौजवान जेंजीज के जो कहते हैं कि इन दोनों में से तो कोई भी जीत जाए हम दोनों टीमों के साथ हैं भाई, ओके भाई। बट तीसरी पोजीशन वर्ल्ड कप में जाहिर है जो फाइनल 12 बजे के बाद होगा उसमें कोई एक टीम फाते होगी वर्ल्ड कप 2026 की, और एक टीम रनर अप यानी के सेकंड आएगी। और इसी तरह तीसरी पोजीशन के लिए कल रात को मैच हुआ था, बल्कि आज ही कहूंगा मतलब 2 बजे मैच हुआ था, रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। अरे भाई क्या खतरनाक किस्म का मैच था, मेरी नींद उड़ा दी उसने हैरत अंगेज तौर पर। 45 मिनट का हाफ होता है, दो हाफ होते हैं, तकरीबन 90 मिनट का मैच होता है डेढ़ घंटे का। तो 45 मिनट में इंग्लैंड ने फ्रांस पर 4 गोल मार दिए यार, 3 गोल पहले हाफ में, 3 गोल चार गोल कर दिए यार, हैरत अंगेज तौर पर। बल्कि 4 गोल, हाँ पहले हाफ में 4 गोल हो गए थे और फ्रांस 0 पर था। मैंने कहा भाई फ्रांस को क्या हो गया, कोई क्लब की टीम है कि वहां की तो क्लब्स टीम भी बड़ी अच्छी होती है। और फिर दूसरे हाफ में फ्रांस ने 1 2 3 3 गोल कर दिए, तो मैच में जो है ना अजीब गर्मा गर्मी हो गई, 3-4 से मैच चल रहा था। मगर फिर इंग्लैंड को पता नहीं क्या हुआ भाई, 5वां गोल, जब 5वां गोल किया तो उन्होंने चौथा गोल कर दिया, यानी 4-5 से हो गया। फिर इंग्लैंड ने एक और गोल दे डाला आखिरी मिनट में तकरीबन, तो यानी कि तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड ने 6-4 से फ्रांस को हराया। अच्छा बड़ी टीमें जब होती हैं, बड़ी टीमों का आपस में जब टकराव होता है तो गोलों की जो गोल्स होते हैं उनका रेशो बड़ा कम होता है, 1-1 से बराबर हो गया, 1-2 हो गया या 2-0 हो गया, ये सिलसिला ये रेशो चल रहा है। बड़ी टीमें होती हैं, अच्छा खेल रही होती हैं, मगर ये बड़ी टीमों के होने के बावजूद वो अटैक मारे दोनों ने, तो बड़ा जबरदस्त सा मैच रहा। तो तीसरी पोजीशन का फैसला हो चुका कि तीसरे नंबर पर दुनिया में इस वक्त इंग्लैंड है और चौथे नंबर पर फ्रांस है। अब ये फैसला होना है जनाब के पहले और दूसरे नंबर पर कौन सी टीम होगी, यानी कि समझ रहे हैं ना, ये फुटबॉल लवर्स के लिए थोड़ा सा यानी कि समझ रहे हैं ना चर्चा कर दी। और इंग्लैंड की जानिब से बेलिंगम क्या खेलता भाई, वो क्या प्लेयर है भाई। लेकिन खैर मैच को छोड़िए, आपके आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब। और खारागर से कौन आ गया भाई, नदीम ब्रो कैसे हैं आप? मैं सलीम
1: मेमन भाई आ गया है। सलीम मेमन कैसा है भाई, तू ठीक ठाक है? बिरयानी वरियानी बिक रही है? नहीं बिक रही है।
0: अरे सलीम मेमन एक बात तो बताए, आपने बोला जी कि आप बिरयानी वाले हैं, तो यह बताइएगा संडे वाले दिन बिरयानी कितनी बिकती है? आम दिनों के बनिस्बत संडे को जो है वो क्या रेशियो होता है, मतलब ज्यादा बिकती है या कम बिकती है? चले बिकती तो हर रोज ही है, लेकिन ये होता है जी कि जल्दी खत्म हो गई, मतलब जल्दी बिक गई, ये जरूर बताइएगा। एक सॉन्ग चला दें,
1: दिल चीज है क्या जाना ये जान तुम्हारी, बिरयानी खाते हुए
0: हाय हाय कहाँ से लाते हो भाई गाने। ओके ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे फरमाइशी प्रोग्राम आज का नहीं होता, ये जहन में रखिए, क्या आपने फरमाइश कर दी और हमने पूरी कर दी, ऐसे थोड़ी है भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। चले इसी बात पर हम आपको एक और गाना सुना देती हैं, ये लो पकड़े।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। भाई आसिम अजहर को सुना आपने और उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके चॉइस पे, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनियो। हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ। और जनाब नदीम ब्रो संडे को ज्यादा बिकती है प्यारी प्यारी बिरयानी। ओके ठीक है ना गल। और कहते हैं कि जनाब क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई गुड मॉर्निंग, इसका मतलब है आप अभी उठे 1:30 बजे के करीब। और नदीम भाई जुमेरात के शो में इतना सैड सॉन्ग डेडिकेट किया मुझे अताउल्लाह का, आंसू निकल गए मेरे यार। आखिर में वही गाना था और आपने डेडिकेशन के लिए कहा था, वो लास्ट में चल रहे थे। खैर इस तरह होता है इस तरह के काम में। और जुमेरात को आपको पता है कि बज़्मे गजल बज़्मे शायरी होती है, तो उसमें कौन से हल्ले गुल्ले वाले गाने तो नहीं चलेंगे ना। हम आज आपको डेडिकेट कर देंगे हल्ले गुल्ले वाला गाना, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो नौमान भाई डोंट वरी, पहला गाना भी आपको अच्छा लगा था पिया कॉलिंग, दिल के इशारे नहीं अच्छा लगा। और ये 5 AM सुबह 5 बजे हैं जी। अभी आपको हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे नौमान भाई बल्दिया से, और वो ट्रैक जो है बिल्कुल नया नकोर न्यू गाना आपको डेडिकेट करेंगे। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा गाना। तो जनाब ये सिलसिला इसी तरह जारी है, मैसेजेस आप कर रहे हैं 3636 पर, गाने हम आपको सुना रहे हैं और कोई ना कोई आए में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपके दिल की भी उनमें बातें शामिल हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं। जी हाँ मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Happy Hour with Nadeem Akhtar.

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको और हमारे प्यारे से नौमान भाई का मैसेज हो गया तो हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब क्यों पीछे रहेंगे भाई, उनका भी मैसेज है, कहते हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, अलाबाग के फजल करम और तमाम रेडियो सामईन और खास तौर पर आपकी दुआओं से बंदा नाचीज की तबीयत पहले से कदरे बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारी दुआ है आपके लिए। और प्लीज सज्जाद अली या नूर जहान की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए। एन गैन फेकाफ नवाजिश होगी। पेशगी शुक्रिया समी शेख अयूब आफरीदी खिताबुल्लाला नसीम कुरैशी इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर लम्हा दुआगो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एबी रिया कराची से। क्या लिखते हैं आप यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खैर जी अलीमुद्दीन साहब आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और माशाल्लाह से आपकी तबीयत में फर्क आया, बड़ी अच्छी बात है। तो लिहाजा आप लोग दुआ करते रहा करें, अच्छी बात है। और हमारे समी शेख साहब मेरा ख्याल है या तो वो होगा अपने ऑफिस ड्यूटी पर जाता है भाई, वो ड्यूटी पर, या फिर वो होंगे घर की जानिब गामजन। और लाला आप किधर गायब हो, मतलब जो दिन के भी शो मेरे सुनते हैं उनका नाम पुकार रहे हैं भाई, आ जाओ आ जाओ। संजू हैं और मुश्क बहुत कम आती है दिन के शो में, बाकी जितने भी हैं आ जाए भाई आ जाए। तो चले भाई इसी बात पर हमारे प्यारे से नौमान भाई बल्दिया वाले, उनको नया गाना जो है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो नौमान भाई जरा सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको, छोटा सा गाना है 2 मिनट का, हेलो फड़ो चल बे भाई।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। है है। गाने का नाम है डिफरेंट और इसके जो सिंगर हैं उनका नाम है मार्शल अहमद। नहीं, हमारे सिंगर जो हैं वो बहुत ओके ठीक चल रहे हैं, उनको याद रखें भाई आप लोग, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। मैसेजेस कर रहे हैं आपके चाय स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। और बात करते हैं कुछ रूटीन के हवाले से, और यही बात मैंने आपसे कही थी, पूछी थी, मगर मजाल है कि किसी की आंख खुली हो या कोई होश में आया हो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। यार इसी बात पर मैं एक गाने की जानिब ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को और वार्म अप करूँ और आप लोगों को थोड़ा सा मैं हिलाऊं जिलाऊं, ताकि यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो एक ट्रैक की जानिब जा रहा हूँ और ये ट्रैक स्पेशली डेडिकेट करूंगा हमारे उन तमाम लिसनर्स को जो कि ड्यूटी सर अंजाम देते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। तो तमाम जितने भी सिक्योरिटी गार्ड मुझे सुनने वाले हैं, उन तमाम भाइयों को मेरी जानिब से ए वाला गाना।

0: वेलकम बैक कहेंगे। हाय हाय चला आया यूके। तू यूके कौन सा भाई? उमरकोट। हमारा यूके तो वही है ना, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। वैसे एक मिसाल कभी आपने सुनी है? अब वो एक कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, आपका कौवा कान ले गया। ये एक मिसाल है और ये मिसाल उन लोगों के लिए दी जाती है कि जो लोग कौवे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और अपने कान को पकड़कर नहीं देखते, यानी इसका लुब्बे लुबाब कुछ इस तरीके से है कि हम अपनी जिंदगी को मुश्किल तरीन ज्यादातर उस वक्त बनाते हैं जब हम लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना। और आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि हमारे इस माशरे का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सोशल मीडिया पर आप आ जाएं या कहीं और भी, आपको बस जो दिखाया जाता है आप उस पर यकीन कर लेते हैं। ये भाई ओके ठीक है भाई, सही हो गया भाई, और फिर उसके ऊपर चर्चा पे चर्चा शुरू हो जाएगी, बात कहीं से कहीं। चाइनीज के हवाले से मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार किस्म की वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जापानीज और चाइनीज। और वो प्रैक्टिस उनकी ये कुछ इस तरह होती है कि माशरे में अच्छी बातों को समझाने का तरीकाकार उसको गेम्स के थ्रू वो सरंजाम देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
1: FM 100's time check. It's 2 p.m.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: Us on facebook.com/fm247365 fm247365।
3: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है। घर के अफराद और आमदन में तवाजन
4: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। अच्छा इस बात को अब आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बीच में ब्रेक आ गई, तो ब्रेक के बाद एक तसलसल टूट जाता है, तो तसलसल दोबारा बनाने के लिए सबसे पहले आपके मैसेजेस की जानिब जाएंगे, चंद मैसेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उन्हीं उसी बात पर आएंगे। और इफ्तिखार भाई कह रहे हैं, नदीम भाई मैंने अपने उस दोस्त को 35 दिन के बाद कॉल की, मैंने सोचा वो अब बदल गया होगा मगर वैसे का वैसा ही था, अब समझ में आया। वो नहीं समझेगा इफ्तिखार भाई, अभी आपको बताते हैं, आपकी इस बात पर थोड़ी रोशनी डालेंगे लेकिन पहले कुछ मैसेजेस हो जाए। नाइस सॉन्ग, थैंक यू। छल्ला आया उमर कोट तू। ये हमारे नौमान साहब का मैसेज था और इफ्तिखार भाई के हवाले से बात करें, देखें भाई आपको उनकी जो शक्ल है ना आपके दोस्त की, वो बड़ी देर के बाद नजर आई। पहले वो जो शक्ल आपको दिखा रहा था ना, अभी जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले, वो भी जरा समझिएगा, इसी से रिलेटेड है कि जो नजर आता है हम बोलते हैं यार यही सही है, ओके ठीक है, तो लिहाजा बनावटी लोग आपके सामने बनावट बन के आ जाते हैं, आप यकीन कर लेते हैं, उसके बाद जब उनका असली चेहरा आपके सामने आता है तो आपको यकीन नहीं आता है जी, यार नहीं जी, क्या जी, वाह जी। इनामुल हक कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, आंटी चाची और सब सुनने वालों को सलाम। हैं जी जी, हैं जी, ये इन्होंने लिखा है। इनाम भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। अच्छा भाई, तो बात मैं ये कर रहा था कि कौवा कान ले गया सुनी सुनाई बातों के हवाले से, और ये हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। हमारे साथ जो अच्छा है हम उसको पशे पुष्ट छोड़ देते हैं, और जो हमारे सामने बनावटी अच्छा बना होता है उसको हम उसकी बड़ी आओ भगत कर रहे होते हैं, और जो दिल से हमारी इज्जत करता है, हमारे साथ साफ गो है, हमें हम समझते हैं यार ये सही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है किसी ने आपके कान में फूंक मार दी, मैं भाई तू नदीम के साथ मत घूमा कर, मैं सही बता रहा हूँ, सही बंदा नहीं है ये, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, नदीम सही बंदा नहीं। हाँ भाई मैं सही बता रहा हूँ, बड़ी चापलूसी करता है यार, ऐसी बातें करता है, बातें करने ऐसी आती हैं उसको, मैं बता नहीं सकता, बातों में ही आ जाएगा तू उसकी। तो हम क्या करते हैं कि इधर उधर के लोगों की बातों को सुनते हैं और बगैर तस्दीक किए हुए आगे भी बढ़ा देते हैं, और बगैर तस्दीक किए हुए किसी हद तक उस पर यकीन भी कर लेते हैं। देखिए हर नजर आने वाली चीज में भी सच्चाई नहीं है, दौर ऐसा बदल गया है, AI ऐसा आ गया है, लेकिन AI से पहले भी एक शख्स था, उसके घर में शदीद किस्म का फड्डा हो गया। किस बात पर? कि उसके दोस्त ने उसकी बीवी को बोल दिया, भाई आपके शौहर को संभाल के रखो भाई, मैंने आज देखा मोटरसाइकिल पर एक बहुत ही हसीन खातून के साथ घूम रहा था, और उसकी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। वो कैसे हो गई? कि जब उसने बीवी ने एक्सप्लेनेशन मांगी, भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, नहीं तुम गलत हो, अरे भाई वो मेरी बहनों की तरह है, ये तुम बात बना रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, वो मेरी बहनों जैसी हैं, उनको कहीं जाना था तो मैंने उनको छोड़ दिया, किसी ने देख लिया होगा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा फिर वो उस पर इतना यकीन कि जो खातून उस बंदे की बहनों जैसी है उसको फोन करके और उसका इतनी इज्जत अफजाई करती हैं, इतनी इज्जत अफजाई कि वो बेचारी रो रो के उसका बुरा हाल, वो जो रिश्ता बहन भाई का बना हुआ था वो टूट गया। किस वजह से? फसाद की वजह से। जो देखा वो कह दिया, तस्दीक किए बगैर उस पर यकीन कर लिया। इस तरह की बेतहाशा आप अगर गिर्दो निवाह में देखें या अपनी जिंदगी की तरफ देखें तो वाकयात होंगे। बहन भाइयों की देख लें, इधर उधर की सुनेंगे, जिसने कह दिया बस यकीन कर लिया, बहन भाइयों के रिश्तों में दुनिया आ जाती है।
रिश्तेदारों के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, मोहब्बतों में दूरियां आ जाती हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपसे जब भी कोई इस तरह की बात हो तो खुदा रा तस्दीक करें। और आपको एक और बात बताऊं, इसकी तस्दीक का बड़ा जबरदस्त सा तरीका, आपको जिसके बारे में कहा गया है और जिसने कहा है उसके सामने उस बंदे को लेकर आ जाओ और बोलो कि हाँ भाई ये तुम्हारे बारे में ये कह रहा है कि या ये ठीक है, बताओ जरा तुम, तो शक्ल जो है आया हो जाएगी सामने। बहुत से लोग, मेरा नाम नहीं लेना भाई, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं अपना ताल्लुक उस बंदे से खराब नहीं करना चाह रहा, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें बता दिया मैंने। ये भी एक इनका तरीका कार होता है ऐसे फसादी लोगों का कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो खैर ऐसे लोगों से कोशिश किया करें कि बचें। अच्छा भाई, अभी एक मैसेज आया था हमारे प्यारे से इनामुल हक भाई का, और उन्होंने हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी का नाम लिया और हमारी प्यारी सी चाची का नाम लिया, उनको सलाम खसूसी तौर पर का। तो सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी जो आंटी है उनके लिए बेतहाशा दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी प्यारी सी आंटी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अभी जो गाना चला रहा हूं ना मैं, ये हमारी प्यारी सी आंटी को डेडिकेट करूंगा क्योंकि उनका है ये फेवरेट गाना। तो आंटी आपके लिए एलो फड़ो।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको काटे ना कटेरे ब्यूटीफुल ट्रैक ये सुरैया भोपाली मेरा ख्याल है मूवी है और रूना लैला की आवाज और उसको गाया बाद में हुमैरा अरशद आयमा बेग और बहुत खूब गाया आपने सुना ये हमारे वालिद साहब को भी बहुत पसंद है उन्होंने बोला हुमैरा अरशद बहुत अच्छा गाया भाई मैसेजेस कर रहे हैं आपकी एच एस पे आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 बार और हमारी प्यारी सी बहन फैसलाबाद से आ गई हैं नौरीन तौसीफ कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई मेरे प्यारे भाई कैसे मिजाज हैं ढेरों सलामती की दुआएं मैं लाहौर में आपका शो सुन रही हूँ लाहौर लाहौर बस दुआओं की खास जरूरत है अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए भाई इससे पहले कि मैं इनके मैसेज को आगे मजीद बढ़ूं आप सबसे गुजारिश है कि हमारी प्यारी सी लिसनर हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ के लिए बेहद दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए उसकी वजह यह है फैसलाबाद से मेरी बहन जो है अपनी ट्रीटमेंट के लिए लाहौर गई है और वहां से इंशाल्लाह ताला आप भागती हुई जाएंगी यार ऐसी सेहत के साथ हमारी दुआएं हैं अपनी बहन के लिए और कह रही है मेरी प्यारी सी बहना संजू को और मेरे प्यारे भाई अयूब लाला मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हैं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सेहत याबी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमेशा शादो आबाद रखे आमीन सुमामीन संजू को कहना मेरी तरफ से सलाम और अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा अभी तो किया संजू को एक गाना डेडिकेट किया मीनी आप यकीन मानो ये आपकी जानिब से भी और हमारी एक और प्यारी सी लिसनर प्यारी सी बहना फातिमा नूर आ गई हैं क्या कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला आपके वालिद को सलामत रखे खुश रखे अस्सलाम वालेकुम सबको आप कैसे हैं मैं फातिमा नूर कराची से पताया में आपके मैसेज पढ़ रही हैं आप मैसेज नहीं पढ़ रहे भाई क्या बात है जो मेरा मैसेज अरे भाई अल्लाह आपको खुश रखे फातिमा नूर आपके सारे मैसेज पढ़ दिए हमने हैं जीते हैं जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और भाई अब जरा एक और मैसेज क्योंकि दुआओं की सिलसिला हुआ है तो हमारे प्यारे से यूसुफ भाई पापोश वाले जो हैं उन्होंने सलाम के बाद एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम कहा खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी को चाची को अरूसा को गुलबानो को तमाम डॉक्टर्स को इमरान भाई खिताब गुल लाला गफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने सलाम कहा है और आज हम नाश्ता कर रहे हैं अंडा पराठा अरे क्या बात है अंडा पराठा चाय साथ में चाय वाह वाह नदीम भाई मेरी भांजी का भी इंतकाल हो गया था 13 तारीख को उनकी मकफरत के लिए भी दुआ कीजिए और अरूसा सिस्टर के भाई का भी इंतकाल हुआ है उनके लिए भी मकफरत की दुआ अल्लाह ताला सब की मकफरत फरमाए जो इस दुनिया से जा चुके हैं आमीन सुमामीन और आपकी भांजी के लिए और अरूसा के भाई के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमाए आमीन सुमामीन अच्छा भाई आज जिंदगी भरपूर तरीके से साथ हैं और कहती हैं कि कैसे हैं अच्छा ये वाला तो हो गया था मैसेज अच्छा हाँ मैं आगे बढ़ गया था भाई और नदीम भाई सलाम आपका शो सुपर से भी बहुत ऊपर अरे भाई बहुत शुक्रिया ये हमारे फैसल अरबाब साहब हैं टिकटॉकर है फैसल भाई अब आपका ये दूसरी मर्तबा मैसेज आ गया अब दिमाग में आप फिट हो गए हैं फुल टाइम हमने आपसे कहा भी था कि हमें बताइए तो सही टिकटॉक हम भी देखें आपकी इसी नाम से हैं फैसल अरबाब के नाम से थैंक्स का है हमारी शहजादी बहना जरीन नूर ने उनके लिए ट्रैक चलाया हमने और जिंदगी कहती हैं आपकी आवाज में सॉन्ग जो मेरे दिल के करीब हो जाए हाय अल्लाह जी आपकी आवाज की दीवानी सिर्फ वो फल्ला जिंदगी अब हमें ये नहीं पता कि आपके दिल के करीब हो जाए या ना हो जाए हमारे सामने जो गाना आएगा हम आपके लिए दो बोल सुना देंगे यानी कि समझ रही है ना छुट्टी का दिन किसी को ज्यादा सोच कर गुजारती हूँ सुकून मिलता है छुट्टी के दिन किसी को सोच कर ज्यादा गुजारती ज्यादा सोचा मत करो जिंदगी हाँ ये बहुत जरूरी है
बहुत मिस कर रही हूँ और उस तक दिल की आवाज पहुंच जाए तो क्या बात हो। हाय अल्लाह जी, क्या बात है, क्या बात है। चले इसी बात पर, आपने आपके मैसेज इतने सारे आए हैं तो कुछ दो चार लाइनें आपके लिए हैं जी, ते हैं जी।

वेलकम बैक। जरा चेहरा सो दिखाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ, और मुझे यकीन है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। मैसेजेस आ रहे हैं आपके KHI स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। अच्छा, मैं एक चर्चा कर रहा था, उस चर्चे पर जाने से पहले एक दो मैसेज और हो जाए। जरा चेहरा तो दिखाओ, थोड़ा सा हिन हिनाओ। नाइस सिंगिंग नदीम भाई, नौमान भाई क्या बात है, अभी मैसेज पर मुझे हंसी आ गई। चाय का कप क्यों भेज दिया भाई, कह रही है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा नूर कह रही है क्यों भाई, मैसेज पढ़ा इसलिए हैं जी, ते हैं जी। और जिंदगी ने कहा है थैंक यू, जीती रहे, मुस्कुराती रहे। और बात थोड़ी सी मैं करूंगा, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, और वो ये थी कि जनाब घर में कोई ना कोई एक फर्द ऐसा जरूर होता है जो कि घर को तहस नहस जो सबने किया होता है, चीजें तरतीब से जो नहीं रखी होती, जहां जो चीज रखनी चाहिए वहां नहीं रखी होती। मिसाल के तौर पर पानी की बोतल हो गई, गिलास हो गया, प्लेट अगर कुछ खाया तो वही टेबल पर पड़ी हुई है, ये नहीं उठाकर किचन में रख दें। अपने बेडरूम में अगर आप चले जाएं तो वहां पर कपड़े इधर उधर गिरे हुए हैं, ये वो। तो अगर हम अपने अंदर ये आदत डाल लें कि भाई जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहां पर रख दी जाए, तो यकीन माने कि घर वाले जो सफाई वगैरह करती हैं, घर की खवातीन, उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। मगर मजाल है कि हम इस तरह करते हो। चले इसी बात पर हम जाएंगे एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानी, बस ट्रैक की बहुत से लोगों ने फरमाइश की है, किस किस ने की है ये हम नहीं बताएंगे आपको, उसकी वजह ये है कि हम वो वाला गाना चला ही नहीं रहे। मिनट्स का आगे पीछे सिलसिलाकार हो रहा है, तो अभी हम आपको एक और ट्रैक सुनाते हैं, और ये ट्रैक जनाब हमारे लाला तो अभी तक आए नहीं है, लेकिन लाला की जाने से हम ट्रैक जरूर डेडिकेट करेंगे, ये हमारा वादा रहा। लाला जी, लाला वादा रहा। फिलहाल आपको इब्रारुल हक सुना रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इब्रारुल हक का ये नया गाना है, हुसना दी सरकार, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। वक्त बड़ा तेजी से गुजर गया, आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत सराघों पर जनाब। इजाजत चाहूंगा इंशाल्लाह, आप लोगों से मुलाकात कल होगी म्यूजिक ट्विस्टर में रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और जो जो कहा है उस पर कुछ अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे से टिकटॉकर फैसल अरबाब आपके लिए ये, और उम्मीद करता हूं ये आपको भी पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 24/7 365 FM 24/7 365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: One, two, three, hit it.
3: Everybody says,
4: Masti karne ka.
3: Everybody say joy.
5: Master in the hands.
3: Come into my world.
5: Come and join it.
4: So listen to Music Must Be.
6: Music Must Be.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Assalamu alaikum, Karachi. आपका प्रेजेंटर महफूज अल हसन आपके साथ. मैं नहीं कहते हैं आपके जब आते हैं महफूज 100% होते हैं आप महफूज. ये आप नहीं कहते बल्कि कहता हूँ मैं कि तू सीधे बड़े ही सोने हो. लेकर आए आपके लिए भाई खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेताबी, बेचैनी, बेसब्री, बेकरारी से इंतजार. और आपके बेकरार मन को आता है करार जब आता है इतवार, जिस हम कहते हैं संडे, और मिलकर मनाते हैं फंडे. सो संडे आन पहुंचा है, फंडे आन पहुंचा है, हमारा आपका प्रोग्राम आन पहुंचा है जिसका हम सब मिलकर नाम लेते हैं एंड प्रोग्राम नेम इज म्यूजिक मस्ती महफूज. म्यूजिक मस्ती और महफूज में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं. आप से लेकर ठीक 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा. इस साथ को यादगार, शानदार, खुशगवार आप सबने बनाना है. अपने मैसेजेस के जरिए बनाना है, फेसबुक के जरिए बनाना है, और कुछ ना सही तो खामोशी से सुनकर इसे अपना बनाना है, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती.

हमारे पुराने दोस्त बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं, लेकिन नए दोस्तों को बताना पड़ता है। ये रिक्वेस्ट शो है, फरमाइशी प्रोग्राम है, और फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि तीन से चार आप फास्ट ट्रैक्स की फरमाइश करते हैं और चार से पांच आप सॉफ्ट मेलोडीज की फरमाइश करते हैं। इसे उल्टा मत कीजिएगा और साथ साथ अपने दिल की बात कीजिए। वीकेंड कैसा गुजरा, हॉलीडे कैसा गुजर रहा है, कल वेरी फर्स्ट वर्किंग डे है, क्या प्लान्स हैं आपके। अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और लिख भेजिए हमें 3636 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJMFUZ यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे जाने के बाद आप मुझे सर्च कर सकते हैं RJMFUZ, मेरा पिक्चर स्टेटस आपको मिल जाएगा। आइए और बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है, और साथ साथ बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम मिशा शफी की आवाज। आप सबकी फरमाइश पर प्रोग्राम का वेरी फर्स्ट सॉन्ग एंड द ट्रैक इज

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti.
1: Musti. Musti.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
5: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.

जी मेरे दोस्तों आ चुके वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। आज है संडे और संडे को फंडे बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वीकेंड को एंजॉय करने के लिए और संडे को फंडे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आप प्लान कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें आप कर गुजरते हैं। आपका संडे बड़ा एनर्जेटिक होता है, आपका वीकेंड बहुत एनर्जेटिक होता है, आप वीकेंड पे कहीं ना कहीं खाने पीने भी चले जाते हैं। बंस रोड गए आप लोग? जिसने बंस रोड के खाने नहीं खाए उसने कुछ भी नहीं किया। कराची में रहने वाला अगर बंस रोड नहीं गया, उसने बंस रोड के खाने नहीं खाए तो कुछ नहीं किया। महंगे से महंगे से खाना, सस्ते से सस्ता खाना, दोनों वैरायटीज आपको मिल जाएंगी और कराची की सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। पूरा फूड स्ट्रीट है। आप देसी खाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, आप कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, आप नल्ली बिरयानी खाना चाहते हैं, नल्ली नहारी खाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। अगर आप साशली खाना चाहते हैं, नूडल्स खाना चाहते हैं, चाइनीज खाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। किसी भी तरह का फूड आपको, बंद कबाब अगर आपको खाना है, बंस रोड का बंद कबाब जबरदस्त, और बंस रोड में जितनी बढ़िया रबड़ी मिलती है पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप बेहतरीन मीठे के शौकीन हैं और रबड़ी खाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, तो 100 रुपए से लेकर हजारों तक की चीजें आपको मिल जाएंगी बंस रोड में। इसके अलावा संडे की सुबह अगर आप शौकीन हैं नाश्ता करने के, तो बहुत सारे लोग बोर्ड बेसिन भी जाते हैं जहां पर आप नाश्ता कर रहे होते हैं, तगड़ा नाश्ता करके आ रहे होते हैं। या इतवार की शाम को आप सी व्यू भी चले जाते हैं, सनसेट देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और करना भी चाहिए। अपने वीकेंड को, अपने संडे को स्पेशल बनाना चाहिए, क्योंकि पूरा हफ्ता आप काम कर रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, तो फिर आपको मौका नहीं मिलता है। तो आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी चाहिए। बैटरी उसी वक्त चार्ज हो सकती है कि जब थोड़ा सा आप आउटिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतवार वाले भी दिन अपने कमरे का एसी चलाते हैं और चादर ओढ़ के सो जाते हैं। तो जनाब चिल कीजिए और साथ साथ एफएम 100 पाकिस्तान और महफूज आपके साथ है और हम आपको जबरदस्त म्यूजिक सुनवा रहे हैं। अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस जब ना मैसेज टाइप कीजिए और लिख भेजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/azmehfooz बताइए संडे को फंडे बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और साथ साथ ढेर सारी फरमाइशें।

0: It's time to turn up the volume and kick the boredom out the door. This is FM 100 Pakistan.
1: जी मेरे दोस्तों आ चुके हैं वापस, जबरदस्त गाने आप सुन रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। हमें सुना जा रहा है कराची में 100 की फ्रीक्वेंसी पे रेडियो सेट्स पे, और 100 फ्रीक्वेंसी के अलावा आप हमें सुन सकते हैं वेबसाइट पे सुन सकते हैं और साथ साथ मोबाइल पे हमें सुन सकते हैं। कराची, कराची से बाहर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर अपने वक्त के मुताबिक सुन सकते हैं आप। FM100Pakistan.com इस वेबसाइट, और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो FM100 पाकिस्तान की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आसानी आप हमें सुन सकते हैं। और अभी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/AZMHFOOZ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको कौन सा गाना सुनना है, अपने दिल की बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा गाने सुनवाएं, आपकी फरमाइशें पूरी करें।

जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। जबरदस्त से गाने आप एंजॉय कर रहे हैं। बात हो रही थी वीकेंड गुजारने की और संडे गुजारने की, तो कोशिश किया करें कि अपनों के साथ आप वीकेंड गुजारें, संडे गुजारें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, ताकि आपको रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो। जो रिश्ते होते हैं ये इंसानी जिंदगी की बुनियाद होते हैं। यकीनन हम अकेले पैदा होते हैं, दुनिया में अकेले आते हैं, लेकिन अकेले जी नहीं सकते। हमें सोसाइटी के साथ जीना पड़ता है, हमें अपने रिश्तों के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, ये हमारी जहनी और जज्बाती सहारा भी होते हैं, हमारी तन्हाई का इलाज भी होते हैं। और जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं, जो अच्छे रिश्ते होते हैं, वो आपको डिप्रेशन से बचाते हैं, एंग्जाइटी से बचाते हैं, स्ट्रेस से बचाते हैं, ये सब चीजें कम करते हैं। जब वो कहते हैं ना कि जब आप पर मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, वो कहते हैं कि मैं हूं ना, तो ये बड़ा सुकून देता है। तो रिश्तों की अहमियत को आप समझिए, क्योंकि रिश्ते आपको मजबूत करते हैं अगर रिश्ते अच्छे हों। माँ बाप का रिश्ता है हमारे साथ साथ, उनकी दुआएं चलती रहती हैं, कितनी नागानियों से हम बचते हैं। हमारा दोस्त है जो हमें मशवरा देता है और बहुत सारी चीजों में जो है वो हमें बचाता है, हमारा साथ देता है। शौहर बीवी का रिश्ता जो है बड़ा जबरदस्त रिश्ता है। तो अच्छे रिश्ते जो होते हैं वो मुश्किल वक्त में आपको गिरने नहीं देते, सहारा देते हैं। तो अच्छे रिश्तों की पहचान आपको होनी चाहिए, अच्छे रिश्तों की आपको अहमियत होनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। मोहब्बत आप उससे करें जो आपसे मोहब्बत है। तो रिश्तों से हम भाग नहीं सकते और रिश्तों को हम खत्म नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए अपनों के साथ, चाहे वो आपके खून के रिश्ते हों, चाहे वो दोस्त हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के हों, सारे अपने। अच्छा जी, अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3636 पर। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz। जुनून हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वाले।

0: यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक मस्ती।
1: मेरे दोस्तों वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक आखिरी का तेज गाना आपको हमने सुनवाना है, उसके बाद 4 बजे की ब्रेक की तरफ जाएंगे। सॉफ्ट मेलोडीज का दौर शुरू हो जाएगा और सॉफ्ट मेलोडीज में हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट हो जाएगा, हमारी म्यूजिक सॉफ्ट हो जाएगी। सो अपने राइट मैसेज में जाइए कि अच्छा लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और लिख दीजिए हमें 3636 पर। इसके साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। द रियल सिंगर नन अदर देन सज्जाद अली।

0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज। बहुत ही खूबसूरत सा कलाम आपने सुना, तू झूम। बारी है आपके मैसेजेस की और हम मूव करते हैं आपके मैसेजेस तरफ और पढ़ते हैं और बताते हैं कि किसने हमें क्या मैसेज किया है। सिराज हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम असलाम, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। हारून हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वसी हमें सुन रहे हैं, वसी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है। हैदर हमें सुन रहे हैं, हैदर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अली शाह हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सादिया हमें सुन रही है, सादिया थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है और पूरी करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तैयबा हमें सुन रही है, तैयबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली मरतबा सुन रही हैं और अपने हैप्पी संडे का हैप्पी संडे, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शब्बीर हमें सुन रहे हैं, शब्बीर बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। इसके अलावा परवेज हमें सुन रहे हैं, परवेज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। रिफत हमें सुन रही है, रिफत थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। और इमरान हमें सुन रहे हैं, इमरान बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मैसेजेस हम आपके मजीद और पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए एक अच्छा सा गाना आपको हम सुनवाने लगे हैं जिसे ओरिजिनली गाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने और इसका रिमेक किया उस्ताद राहत फतेह अली खान ने, सांसों की माला।

0: You are listening to Music Masti.
1: क्या बात है जी, जबरदस्त गाना आपने एंजॉय किया. फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, लेकिन मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा. आपके मैसेज मेरे पास जी सारे मौजूद हैं, वो मुझे पढ़ना जरूरी है. मैं चुप हो गया तो फिर आपको चुप्पी लग जाएगी. अजहर हमें मैसेज करें, सलाम करें. वालेकुम सलाम, पहली मरतबा आप सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे. उज्मा में सुन रही है उज्मा, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर लिया है. शाहिद अली हमें सुन रहे हैं, शाहिद अली थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया. आबिदा में सुन रही है, आबिदा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. सिद्दीकी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा तलहा हमें सुन रहे हैं, तलाब थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलम, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है. मरियम हमें सुन रही है, मरियम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. खालिद हमें सुन रहे हैं, खालिद हैप्पी संडे, पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया. सरवत हमें सुन रही है, सरवत बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलम. इसके अलावा परवीन हमें सुन रही है, परवीन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलम. आफ्ताब हमें सुन रहे हैं, आफ्ताब बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. साथ हमें सुन रहे हैं, साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलम. इसके अलावा अदनान अली हमें सुन रहे हैं, अदनान अली बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. मुनीर हमें सुन रहे हैं, मुनीर वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और आसमा फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. तो मेरे दोस्तों, इस तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं कि आप हमसे फरमाइश करते हैं, हमसे हमारे लिए मैसेजेस करते हैं, वक्त निकालते हैं. थोड़ा सा वक्त हमारे प्रोग्राम में और है, अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3636 पर. इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz. दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने. फैल संजरानी की आवाज़.

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti.
1: Musti. Musti.
2: डेंगी एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti.
5: All right, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। खूबसूरत सा कलाम आपने सुना, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, और आवाज तुफैल संजरानी। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों तुफैल संजरानी साहब की काफी तबीयत खराब हो गई थी और हॉस्पिटलाइज्ड है, और लेकिन अब वो ठीक होकर घर वापस आ गए हैं। लेकिन मुझे अजीब गुस्सा आया उन लोगों के जहनों पर, उन कम अकलों पर, या मैं बेगैरत भी कह सकता हूं, कि जिन लोगों ने इनकी मौत की इतला YouTube शॉर्ट्स में और Facebook रील और Insta रील पे फैला दी। पता नहीं कौन लोग होते हैं कि अच्छे खासे जीते जी इंसान को ये मार देते हैं। सेहत की दुआ करने से ज्यादा ये लोग पता नहीं किस काम पे लग जाते हैं, या इनका घर इन्हीं चीजों से चल रहा होता है, चंद व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, या फैन फॉलोइंग के लिए आप इतनी गलत इत्तलात फैला देते हैं। माना कि इनकी तबीयत काफी खराब थी, इनको कुछ हार्ट का मसला था, लेकिन डॉक्टर ने इनको बहुत अच्छा ट्रीट किया, ये अपने घर वापस आ चुके हैं और तेजी से ये रिकवर हो रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो अभी भी, मैंने कुछ दिनों पहले और अभी भी कल भी मैंने देखा कि इनकी मौत की इत्तला फैलाई हुई है। पता नहीं कौन लोग हैं हम। तो फैल संजानी साहब की भी सेहत के लिए दुआ करेंगे और साथ साथ उन कम अकलों के लिए, और जो बुरे लोग हैं कि जो सबके लिए पीछे पड़ जाते हैं और सबको मारने पे तुल जाते हैं, इनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी जहनी कैफियत जो है वो ठीक करे। इनके लिए कहा जाता है, कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं? अच्छा जी, अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस भी, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए मैं 366 पर, इसके साथ facebook.com/rjmehfooz। शिराज उपल की आवाज मुझे

0: You are listening to Music Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, वक्त कम, मुकाबला सख्त, आखिरी का तेज गाना आपके लिए हमने प्ले करना है और आपसे इजाजत भी चाहनी है। जहां रहे खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखे खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम, अजबी दुआ के लिए हाथ उठाएं, महफूज कर एफएम 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे दोपहर 3 बजे। जाते जाते बहुत ही खूबसूरत सी आवाज आपकी समाधों की नज़र करेंगे, फरहान की आवाज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: Keep it locked to 100 FM.
1: FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: एंड स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaar, wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sweep Be Clean, kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.

0: आज भी इस गोल डेली लो फिट रहो
1: फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: फिनिक्स लगा और भूल जा
5: एंड स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: And HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL। And
9: तूफान है ये, हर जीत की पहचान है ये।
10: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
13: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
14: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
15: ہماری ذمہ داری ہے۔
16: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Like us on facebook.com/fm247365
17: fm 100
18: 31 saal fm 100

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: And sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
7: And toofan hai har jeet ki pehchan hai.
0: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: हायर
1: का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL. एंड
5: तूफान है हर जीत की पहचान है.
0: 100 FM.
6: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: কাশ্মীর সুগোল ডেলি লো ফিট রহো।
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।
2: का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: तूफान है।
6: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 like us on facebook.com/FM247365।
9: FM 247365।
10: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: ఆశీస్ ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: तूफान है.
5: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है. ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है. मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है. ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो. वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें. हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है. नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل FM پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو FIA، سائبر کرائم ونگ، PTA یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
8: facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by Tufaan Hai.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
0: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: 8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: 24/7/365

0: अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
2: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
5: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
6: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
7: हमारी जिम्मेदारी है।
8: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/fm247365
10: fm247365.
11: Let's celebrate
12: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्ती तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: FM 100
3: साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
1: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash।
2: Like us on facebook.com/FM247365.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरे इस्तेमाल। मुनशियात खरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स AML वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।